सबसे पहले तो शुक्रिया शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट. वी विल मिस यू. हमारे लिए कुछ न कुछ सोच रहा है. एक ही ख्याल आ रहा है.

0: आजा प्यार की होड़ी ले।
1: दिल बोले तो
2: हाट हाट
3: हमारा यार सौदा सौदा
2: ओहो
0: दोनों डील करा